0: ये बोलो बिस्ती, ये बोलो बिस्ती, क्या है जो खेत लगाने लाये, तू बोल ले।
1: मुरत देशल बुर अंबिती, दुम्बु पुरे, खफ्तान दुरा से, जल क्या लेते कि मराकी सुरा कर, सपोर्टर बन गए स्टिकली भी आखम ने, ऐ तू बाबा कैसे हैं ते, दर स्टिक का सही ने, कब पति सिंचु बाते, हम ना दी, अको दस दो कुछ दिन ने, तो वो कितने सिंचु बाते हो, यार सपोर्टर ना सिंचु बाते हो, तो वो लोग सिंचु चलो, अके न्याओ, अके बन, अके तक, अके जीनी, नंदे लो सिंचु बाते को चाहन कुमुदन Cheikh Al Khadim moy ko xamne diwanu yalla bu tuye bur yalla bu ndaje ken du seug ken du sigi ken du waxta ñew khatibu rijalullah fi hadrati liqa falam yakun minhum qa'ilun thumma qa'il bada baynahum shamsun wa hum kawakib wa nurun najum bi shamsi afil bu ga yep dajere nan nankat ahmadu bamba te ko neuf yu balé
0: yebul bisti yebul bisti jere jaxé lo nay dina mondo